0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन् 2026 मे 14 तारिक वैशाख 31 गते बिहीबार द्वादशी 6:46 मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी

राजा नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाय नै परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल, जफेबाट आको म। एउटौ शङ्ख कपाला भूषित करौ, मालस्ती माला धरौ, देवौ द्वारौ तिसमा चान ननिलौ, नागरी गोवर्धन हो। त्रिरक्षे बलि दक्षे यज्ञ मथनौ, शिर शैलजा बल्लभौ, पाप मे हरता सदा हरिहरौ, श्री बस गङ्गा धरौ।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका गोरछ गरुण र दाना बहरू नाकमा रावण नासिका।